दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जरा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को। एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

आज कार्यक्रम को क्रम में राखी स्थित व्यापारिक विश्राम संगसंगे अब यहां फिर स्वागत करद आज हमें कार्यक्रम का विस्तार भाका को शुक्रवार व्यवसाय में रहकर देवहरसंग क्रका गये देवहर को रिजाई में रहकर भाका कार्यक्रम में स्थान दी अगाड़ी बढ़ी रहा थी अब भी हमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम समय में आईपुगा देवहर मज रह ये सुमधुर खाल का भाकासंग सहयात्रा करने मन हुई छुट्टी जान पर्ने हुआ अगमी श्रृंखला में रहकर विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकासंग सहयात्रा करने विश्वास दिलाऊ कार्यक्रम समय अवधिभर सुनेर साथ दिने संपूर्ण लोकगीत पारखी संगे रेडियो पारखी मनहरूप्रति विशेष आभार के शब्द व्यक्त करते विशेषकरी कार्यक्रम में सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्णमा धीरे धीरे धन्यवाद का शब्द व्यक्त करते जादा जादा अर्क सुमधुर खाल दशैं भाका छोड़े आज के बसाई बादा हो ज्ञान सूचना और मनोरंजन का सुंदर गुणहला रेडियो आदि खोला यहां बाकी पल शुभ रहोस् मंगल रहोस् नमस्ते जय गीत जय संगीत।

0: Karima Vikas Bank Limited. Access to all.
1: Hello, भाई तिमी पोखरा नै छौ नि है मैले यहाँ व्यापार